0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: द शो स्टार्ट्स इन 5, 4, 3, 2, 1, go।
3: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, या रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नोस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। हाय, इट्स मी सुरेन एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन द मिर्ची टॉप 20। एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, विच इज अ डीसेंट साउंडट्रैक, लेकिन ये रॉकस्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है। ये बात आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ। द सॉन्ग्स हैवन कनेक्टेड द सेम वे, बट हियर इज अ नाइस सॉन्ग मस्कारा, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, एंड इट इज ऑन नंबर 20।
4: नंबर 20।

कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं उसके डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? दिस एपिक फिल्म इज री रिलीजिंग, सो वॉच इट अगर आपको वक्त मिले। फिलहाल mirchi.20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑन द शो, दिस इज चांद मेरा दिल ऑन नंबर 18।

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Murga, murga. Naveed wala murga.
1: Mirchi murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिया यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो, बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए बेहतरीन क्लोज उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब
3: नहीं। मैं कल को
2: फोटो खींचे,
3: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता।

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एके बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, AR रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो से म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by AR रहमान एंड इरशाद कामिल।
1: नंबर 16।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता, आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो। पड़े अगर तेरे लिए

देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोज में।

0: Dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची टॉप 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी.
1: पिक ऑफ द वीक.

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना। वेल, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में, नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता। आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए।
1: इश्क

यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर, नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

सत्ते पे सत्ता, ये फिल्म जब आप देखते हैं ना, आपको समझ नहीं आता कि किसको ज्यादा पसंद किया जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें वो जो सातों के सातों भाई हैं ना, इतने मजेदार हैं, एक एक किरदार है वो अलग अलग। अभी मैंने लास्ट टाइम फिल्म देखी थी तो मुझे शक्ति कपूर पे बड़ा प्यार आ रहा था यार। वो जो उसमें मंगल का रोल करते हैं ना, जो बात करते करते थोड़ा अटकता है। और भी जो भाई का किरदार निभा रहे हैं जितने भी एक्टर्स, वो सारे किरदार इतने यूनिक है ना, सबको कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी दी गई है। सत्य पे सत्ता उन फिल्मों में से एक है, वो जहां भी मुझे देखने को मिले ना, मैं तो बैठ जाती हूँ। 1982 की वन ऑफ द हिट फिल्म्स, सुपर हिट मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आपको पता है 1982 की टॉप 10 फिल्मों में ये आती ही नहीं है। कौन सी फिल्में आती हैं? एक तो डिस्को डांसर, विधाता, प्रेम रोग, खुद्दार, निकाह, अशांति, राजपूत, फर्ज और कानून, शक्ति, एंड हाउ टू फॉरगेट अमिताभ बच्चन साहब की ही नमक हलाल। तो इसका ये गाना सुन लेते हैं जिसमें सीख समझाइश दी जा रही है हमको। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: मिर्ची बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
3: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है मेरे रेडियो मिर्ची पे।
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
3: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू। थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: शर्मिला टैगोर जब स्कूल में स्टूडेंट थी तो कैसी थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: वेरी स्टूडियस, और जो हमारे कैप्टन जो कहते थे, आई वाज अ स्लेव ऑफ माय स्कूल कैप्टन, अगर मुझे कुछ भी बोले आई वाज द फर्स्ट वन टू गो।
0: वाह, सुंदर भी और स्टूडियस भी। वैसे ये तो आपको पता है ना कि शर्मिला टैगोर बंगाल के प्रेस्टिजियस इलस्ट्रियस गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से बिलोंग करती हैं। शर्मिला का ये नाम शर्मिला किसने रखा, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था। ऑल्सो इनका निकनेम रिंकू था।
1: बंगाल में सबका डाक नाम होता है, जिसको हम डाक नाम बोलते हैं। डाक नाम जो एक घर का नाम होता है, रिंकू और शर्मिला वॉज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर when he came back from Czechoslovakia, वहाँ का नाम था योर्मिला। उस वापस आने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा दुई बोन बोल के, तो उसमें देयर वाज शर्मिला एंड उर्मिला। योर्मिला का उनको इन्फ्लुएंस होके वो शर्मिला।
0: चलिए, शर्मिला ने भी टैगोर खानदान का नाम अलग ही तरह से रोशन किया। पुरानी

0: जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

1969-70 में एक अमेरिकन फिल्म का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके काफी सारे वर्जन्स थे, काफी सारे सिंगर्स ने इसे गाया था। एक वर्जन मैं आपको सुनाती हूँ जो वहाँ के तब के फेमस सिंगर एंडी विलियम्स ने गाया था। गाने के वर्ड्स हैं, रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड। सुनिए जरा।

ऐसा कहा जाता है कि इसके म्यूजिक से 1976 की फिल्म चलते चलते का जो गाना दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे उसका म्यूजिक लिया गया है। वेल, आप ये गाना सुनो जरा, दूर दूर चलते चलते का, और खुद ही डिसाइड करो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

वो फिल्म बड़ी स्पेशल होती है जो हमने सिनेमा हॉल में पहली बार देखी होती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो सिनेमा हॉल, वो शहर, वो वक्त, कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी होती है ना। वैसे आपको पता है शाहरुख खान ने पहली कौन सी फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी? भाई तब वो 8 साल के थे और स्कूल में ना उनकी हिंदी बड़ी कमजोर थी, तो उनकी मम्मा ने उनको बोला कि भाई हिंदी के टेस्ट में तुम 10/10 लेकर आओ, तब तुमको फिल्म दिखाने ले जाएंगे। तो शाहरुख ने ऐसे वैसे जैसे भी करके, थोड़ी सी चीटिंग भी करके, हिंदी के टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10/10 लेकर आए। और तब उनके पेरेंट्स उनको दिल्ली के विवेक सिनेमा हॉल में 1973 की जोशीला फिल्म दिखाने ले गए। ये यश चोपड़ा साहब की फिल्म थी, उसी का गाना सुन लेते हैं। गाना थोड़ा सैड है लेकिन याद कितनी स्पेशल है। आपकी भी ऐसी कोई याद होगी जब आपने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी थी, कौन सी देखी थी, कौन सा थिएटर था वो, कौन से शहर में, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

आपको पता है सिंगर शब्बीर कुमार मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। वेल, उनकी आवाज से भी समझ में आता है कि वो रफी साहब के कितने बड़े मुरीद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और शब्बीर कुमार साहब ना इस तरह के इवेंट्स में परफॉर्म करते थे, एक शाम रफी के नाम या मोहम्मद रफी सॉन्ग्स नाइट, और इसी तरह के किसी इवेंट में उनको नोटिस किया मनमोहन देसाई साहब ने। भाई उस टाइम पे लोग मोहम्मद रफी साहब जैसी आवाज ढूंढ रहे थे, बिकॉज रफी साहब हैड पास्ड अवे इन 1980, और तब देसाई साहब ने इनका नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रेकमेंड किया, और कुली में अमिताभ बच्चन साहब की आवाज ये बन गए। उसी साल 1983 में इनकी बेताब फिल्म भी आई, जिसमें सनी देओल की आवाज ये बन गए। उसी फिल्म का ये गाना सुनते हैं, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, साथ में लता मंगेशकर की आवाज भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
3: क्या हो गया
4: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने।
3: क्या हुआ क्या है
4: सर, एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने।
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम क्या है।
4: चंद्र फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार,
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये।
3: अरे आपने लिया कहाँ से था।
4: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
3: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
4: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप।
3: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
4: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: थोड़ी ना
4: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
3: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
4: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: तो आप हमें फोन कर रहे हैं गुब्बारे वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर।

0: को कहाँ ढूंढू भाई?
1: हेलो
0: भाई साहब, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है, आप फालतू हैं।
0: न सर, आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
0: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो। हाँ, कुकड़ू को बोल दिया।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

कपूर खानदान के चश्मो चिराग ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और कपूर खानदान के ही एक चश्मो चिराग थे शम्मी कपूर साहब, जिन पर न जाने कितने ब्रिलियंट अमेजिंग माइंड ब्लोइंग गाने पिक्चराइज हुए हैं, लेकिन उनका मन पसंद ऐसे दिल को छूने वाला फेवरेट गाना पता है कौन सा था? उनका खुद का। 2011 में जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले तक जो फोन वो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें उनकी रिंग टोन थी ये गाना। कौन सा गाना? शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, पगला कहीं का फिल्म का ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: Purani Jeans
0: with Charu, only on Mirchi.

जूल थी फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय एसडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है एसडी बर्मन साहब को प्यार से फिल्म इंडस्ट्री में कर्ता कहा जाता था। कर्ता का मतलब कार्य करने वाला या क्रिएटर। अच्छा, 1944 में जब एसडी बर्मन कलकत्ता से बॉम्बे आए थे ना, तो बहुत बेजार हो गए थे उस शहर से, फास्ट पेस्ड लाइफ, और उनको लगा कि बॉम्बे बहुत मटेरियलिस्टिक है, उनके स्वभाव का नहीं है। उन्होंने मन बना लिया था कि भाई वापस चले जाएंगे कलकत्ता, लेकिन फिर जैसे तैसे वो रुक गए। अच्छा वह रुक गए, नहीं तो उनकी कहानी, उनका जीवन वैसे आगे नहीं बढ़ता जैसे बढ़ा। और फिर हमें आरडी बर्मन भी मिले, जिनका कंपोज किया हुआ अगेन आइकॉनिक गाना हम सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

1975 में ना एक फिल्म आई थी काला सोना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसका म्यूजिक कंपोज किया था आरडी बर्मन ने, और इसका जो टाइटल म्यूजिक था ना, इसका थीम म्यूजिक, वो जो आरडी बर्मन ने कंपोज किया था ना, वो आप थोड़ा सा सुनिए जरा।

सुनी सुनी सी धुन है ना। वेल, इस धुन को इन्होंने दोबारा इस्तेमाल किया था 1977 में इस गाने के लिए जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, खुद आर डी बर्मन की आवाज, फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

1981, then 1993, then 2003. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 10-10 साल के गैप वाले साल वो साल हैं जब संजू बाबा और उनके पापा सुनील दत्त साहब ने किसी फिल्म में साथ में काम किया था। साथ में काम किया था मतलब एज सन एंड फादर काम किया था। सो 2003 में मुन्ना भाई MBBS, 1993 में ये फिल्म थी क्षत्रिय और 1981 में ये फिल्म थी रॉकी, जो संजू बाबा की लॉन्च फिल्म थी, जो सुनील दत्त साहब ने ही डायरेक्ट की थी। इसी का गाना सुनते हैं। RD बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, आशा भोसले, किशोर कुमार, RD बर्मन की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।
1: कहिए श्रीमान।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन्स लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लेंस कुछ लगाया नहीं।
4: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब
4: नहीं दी थी
3: मैं
4: कल को
3: फोटो खींचे।
4: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
3: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
4: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
3: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
4: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
0: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: 70s की दो हीरोइंस परवीन बाबी और जीनत अमान ने ये पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया कि हिंदी फिल्मों के हीरोइंस कैसी दिखती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर चाहे वो उनके लुक्स हो, उनका मेकअप हो, स्टाइलिंग, फैशन, फिगर हो, इस बारे में सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने क्या कहा था।
1: ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, इत्तेफाक से हो गया। There was no strategy, that was who I was. I was studying in America, मैं वहाँ से आई थी। So I had a cosmopolitan upbringing. So that was who I was. And those films worked. And because the films worked, I was accepted by the audience.
0: ऐसे आपको पता है अपनी पहली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जो सुपर हिट हो गई थी, जिसके बाद ये सेंसेशन बन गई थी, उसके बाद ये सब छोड़ छाड़ के बैग वैग पैक करके यूएस जाने वाली थी। देवानंद साहब ने उनको रोका कि भाई यहाँ रुक जाओ, तुम्हारा बहुत स्कोप है।
1: Yes, that is exactly what happened. क्योंकि मुझे फिल्मों के बारे में बहुत कम पता था, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि you know I was starting a career. तो ये सारी फिल्में एक के बाद एक हिट हो गई, तो तब मुझे पता चला कि you know what, I'm a leading lady in Hindi films. So yes, then I started to enjoy.
0: बस इसी enjoy में इन्होंने इतना बड़ा और ढेंटेडाइन टाइप का करियर बना लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: सुनो, हम किसी से कम नहीं, ठीक है?
1: मिर्ची, सुन रहे हैं आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और नहीं, मैं कोई शेखिया नहीं मार रही, मैं एरोगेंट नहीं बन रही,
0: मैं तो ये बता रही हूँ आपको कि 1977 की हम किसी से कम नहीं के म्यूजिक के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब ने आरडी बर्मन की कुछ 200 ट्यून्स रिजेक्ट की थी।
1: पर फिर पंचम कौन से कम थे, उन्होंने वो 200 ट्यून्स कहीं और बेच दी। मतलब ऑफ कोर्स वो अच्छी ट्यून्स थी, तो किन्हीं और फिल्मों में, किन्हीं और गानों में इस्तेमाल कर ली गई। और इस फिल्म के लिए जो ट्यून्स चुनी गई थी, क्लासिक ट्यून्स, उन्हीं में से एक ही आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ क्या लिखा है गुलजार साहब ने इंतजार पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो गुलजार साहब कहते हैं, सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया, फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, ये गुनाह हमने एक बार किया। और इंतजार के ऊपर ही गुलजार साहब का लिखा हुआ, एक्चुअली किसी के आने का इंतजार खत्म होने पर जो खुशी होती है उस पर जो गुलजार साहब ने लिखा है, अब हम वो गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट। और इमेजिन कीजिए आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, बहुत कस के भूख लगी है और खाना ऑर्डर किया है, डिलीवरी बॉय बस आपका खाना लेकर आ ही गया है और ये गाना चल गया है।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ले मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है, आप फालतू
3: हैं। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू को।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं

सुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् उपेरतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रवेशं वाराणसी पुरपतिं

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डोमिनेटिंग लोगों से परेशान होने के बजाय उन्हें सही तरीके से हैंडल कैसे करें, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक सवाल आया है, इन्होंने अपना नाम छोड़ा है मैथ्स बेस मेकर, मेरे ख्याल से कोई काम का हैंडल होगा। वो लिखते हैं कि अगर हमारे आसपास हमेशा डोमिनेटिंग लोग हों जो हर बात में कंट्रोल करते हैं, दबाव बनाए रखते हैं या हमारी बात और भावनाओं को महत्व ना देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ शांति और आत्मसम्मान बनाए रखते हुए कैसे रहना चाहिए?
4: डिफिकल्ट हो सकता है। देखो, अभी हम हमेशा कहते हैं चॉइसेस। अगर आप किसी डोमिनेंट व्यक्ति के साथ रहते एंड इफ इट्स गेटिंग वेरी टॉक्सिक फॉर यू, और आपके पास ऑप्शन है लीव करने का, तो भले अगर आप कर सकते हैं। अगर वो वर्क प्लेस आती है और आपको लगता है सामने वाला गलत है, दबाता है, कंट्रोल करता है, अपनी पावर को मिस यूज करता है, तो आपको अगर उसमें से निकलना है, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, इट इज ओके, बट दैट इज नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन। कभी कभी तो आप वर्क प्लेस में भी नहीं छोड़ सकते, कभी कभी तो वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो दूसरी चीज होती है कि अपने को इतना स्ट्रांग बनाना कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े।
3: जी।
4: कोई आपको कंट्रोल कर सकता है लेकिन फिर भी वो आपके माइंड को तो डोमिनेट नहीं कर सकता ना। बाहर आपको कुछ करने के लिए कह सकता है, आपको गलत लगता है, आप मना करेंगे तो कंट्रोलिंग व्यक्ति रिजेक्ट करेगा।
3: सही बात है।
4: पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पर है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: रिजेक्ट भी करेगा, आपसे कुछ प्रिविलेजेस भी ले लेगा।
3: बहुत बढ़िया।
4: लेकिन अगर आप अपने को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि उस रिजेक्शन का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता और आप किसी भी प्रिविलेजेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप राइट पर रह सकते हैं।
3: बहुत।
4: और राइट पर रह करके आपका उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ता। समवेयर आई फील इफ यू कैन लिव विद अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, यू ग्रो वेरी फास्ट।
3: अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि आप एडजस्ट करना सीख लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसको अवॉइड करना है या इसको ऐसे हैंडल करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। कई लोग उसी चीज को चैलेंज समझते हैं, कहीं उसी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आप अपॉर्चुनिटी समझेंगे और कहेंगे कि ये वही तो ट्रिगर कर सकते हैं जो मेरे अंदर है। वो कंट्रोलिंग है तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड होऊंगा। अगर सी दे कैन ओनली ट्रिगर व्हाट इज विद इन मी, वो तो नहीं ट्रिगर कर सकते जो मेरे अंदर है। तो अगर कोई डिफिकल्ट पर्सनालिटी है, वो हमारी वीकनेसेस को भी ट्रिगर करती है।
3: वेरी नाइस।
4: अगर मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझूं एंड आई सी इट एज अ मिरर कि ये मेरे अंदर भी तो मैं जल्दी जल्दी अपसेट हो जाता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता
3: है,
4: मेरे अंदर बहुत वेस्ट चलता है, सो आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने को एम्पावर करूँ ना। कितनों को छोड़ेंगे?
3: बिल्कुल सही बात।
4: कितनों से किनारा करेंगे?
3: सही बात।
4: कितनों को बदलेंगे? इससे तो अपने को बदल रहे।
3: और मैथ्स बेस मेकर जो इंस्टाग्राम का हैंडल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जिद है उनकी आंधियों की तरह चलने की, तो हमारी भी आदत है दिए की तरह चलने की। ये सोचें और आगे बढ़ें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज की जेनरेशन को सक्सेस का असली मतलब कैसे समझाना चाहिए, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं जीतू कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा था और उन्होंने कमाल की एक बात कही कल्चर के बारे में और कैसे हमारे एनवायरमेंट में जो होता है वो बहुत हमको इम्पैक्ट करता है। तो आज के जो 20-30 साल के जो जेनरेशन है, जो बच्चे हैं जो आज जिंदगी संभाल रहे हैं, उनको सबसे बड़ा झूठ सक्सेस के बारे में क्या भेजा गया है आपके हिसाब से?
4: सक्सेस जो कई बार आजकल देखे जाते हैं वो एक्सटर्नल लेवल पर देखे जाते हैं। सक्सेस एक्चुअली क्या होती है? एक है फाइनेंशियल सक्सेस, जिसमें आपके मटेरियल कंफर्ट्स हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ वही सक्सेस नहीं होते। आपके पास सब प्रकार के मटेरियल कंफर्ट्स हैं पर आपकी रिलेशनशिप कोलैप्स हो रही है, लोग आपको दुआ नहीं देते, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, और उससे भी बड़ी बात आप लोनली फील करते हैं, आपको खुशी नहीं है, आप अंदर से कंटेंट नहीं है। तो सक्सेस, सफलता का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली, सोशली।
3: ये आपने बहुत अच्छे से, कमाल से एक बार पहले भी कहा था मुझे, धन मन जन, इस तरह से आपने कुछ समझाया था
4: ना, मन भी शांत हो, तन भी हमारा कंफर्टेबल हो, धन भी है और जन रिलेशनशिप्स। कई जगह पर रिलेशनशिप्स कोलैप्स हो रही है, उसका भी तो टोल होगा ना
3: जी।
4: तो सफल होना जरूरी है, लेकिन ये सारे पैरामीटर्स चेक करें। और मुझे सफलता शब्द ज्यादा पसंद है सक्सेस से ज्यादा हिंदी में, क्योंकि सफलता का मतलब होता है सफल करना। एक व्यक्ति जो सफल है, जो उसकी निशानी होगी कि जो कुछ उसके पास है, चाहे वो स्किल है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज है, धन है, समय है, वो फिर उसको दान में लगा देता है कि जो मुझे मिला है वो हम शेयर करें। और दान एक ऐसी चीज है, आप जितना देंगे
3: उतना ही वापस मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा।

0: कोई भी चीज़ बढ़ाने का तरीका है कि आप उसको देना शुरू करें। तो सफलता माना सफल करना, तो हमारा जो सफलता होता है अक्वायर करना, सब अक्वायर करते रहना, पर एक्चुअली सफलता है अक्वायर करना नहीं, शेयर करना। सो इफ यू सी दैट इन समबडी देन यू नो कि वो सफल है, वो सिक्योर होते हैं सफल लोग।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या फर्क है और दोनों हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि सक्सेस के पैरामीटर्स हमने शायद धन से मापे हो, फाइनेंशियल सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हम अंदर बहुत मिजरेबल होते हैं, हम बहुत खोखले से होते हैं, और बात हमको ना बहुत सालों बाद रियलाइज होती है, क्योंकि उस समय हम जब 20 30 40 साल के होते हैं हम काम में इतने मसरूफ होते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते। और जब आपको अपने साथ बैठना पड़ता है, जब शायद काम थोड़ा कम हो गया होता है, रिलेशनशिप शायद आगे मूव ऑन हो चुके होते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं यार मैं लोनली भी हूँ, सॉलिट्यूड हो चाहता था लेकिन लोनली हो गया। तो ये
4: दोनों में फर्क है, एकांत है, एक अकेलापन है।
3: तो ऐसा क्यों होता है कि ये बहुत बाद में समझ में आता है और ये शायद स्पिरिचुअलिटी का लेसन हमें कोई पहले सिखाता ही नहीं?
4: से दो कारण होते हैं। एक जो कारण है कि जो सफलता आपने बाहर के प्राप्त करी उसका तरीका क्या था। कभी कभी आपने बाहर की सफलता गलत नहीं है, धन संपत्ति गलत नहीं है, कईयों को लगता है धन माया है, धन माया नहीं है, लोभ माया है।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: आपने अगर उसके लिए कहीं चीट किया, किसी को दुख दिया, ग्रीड इज रॉन्ग। धन तो धन होना और एक कंफर्टेबल लाइफ होना उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने वो कमाने में आप अनएथिकल रहे थे, कईयों को दुख पहुंचा, कईयों को चीट किया, आपके किसी कर्म से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो जो एनर्जी है वो लौट करके आती है। इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि आप बाहर से बहुत सफल हैं लेकिन तरीका अगर ठीक नहीं था तो वो अकेलापन खालीपन महसूस होता है। दूसरा जो कारण है कि आपने बाहर तो बहुत मेहनत करी लेकिन अंदर जो खुशी है वो मन की स्थिति है, आपके ख्यालात कैसे हैं। अगर आपने अपने ख्यालातों को खूबसूरत नहीं बनाया, बना आप बहुत सफल हैं और फिर भी आप किसी से तुलना कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके आप उनके

0: Mirchi Recharge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: टॉक्सिसिटी को सहना सही नहीं, लेकिन हर बार खुद को विक्टिम मान लेना भी ठीक नहीं है। इस बैलेंस को कैसे समझें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बहुत कॉमन ट्रेंड बोल सकते हैं, हकीकत भी होगा ही, कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो टॉक्सिसिटी को, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो, बॉसेस हो, जो भी हो, उसके लिए एनवायरनमेंट को, मैनेजर्स को, दूसरों को ब्लेम करते हैं। और सही भी है, होता भी होगा, मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है। सोसाइटी को भी ब्लेम करते हैं, ज़रूर होता होगा, लेकिन इस विक्टिम मेंटालिटी में चलने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखना छोड़ देते हैं। शायद मैं भी करता ही होऊंगा कभी ना कभी। तो ऐसे लोगों से कौन सा वो हार्श ट्रूथ है जो उनको बताना बहुत जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं हम दूसरों की जगह खुद की तरफ उंगली करें?
4: हार्श ट्रूथ तो ये है कि आप कितना भी चाहें, आप दूसरे को नहीं बदल सकते। आप ब्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, सारा दिन बैठ करके उनके बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, पर चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ आपको ही डिप्लीट कर रही है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है भी, तो पहले तो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, ये तो ऐसा है कि सड़क पे इतना ट्रैफिक क्यों है? इतना कैसे बढ़ गया? पहले तो इतना नहीं होता था। चलाएं तो कैसे चलाएं? अब आप कितना भी करें उससे कोई फायदा तो है नहीं। रियलिटी है, ट्रैफिक है और बढ़ रहा है। तो आप ये देखते हैं कि हम उसमें कैसे अपने को सेफ रखें। मुझे ए से बी डेस्टिनेशन पर जाना है, हम ये भी कर सकते हैं, ये कैसे चला रहा है, इसको लाइसेंस कैसे दिया इसको, लेकिन हम वो भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमारा एम तो यही होता है ना कि मुझे सेफली पहुंचना है, मेरी गाड़ी पर डेंट नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही मेरे मन पर भी डेंट नहीं लगना चाहिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच करके मेरे मन पर डेंट लग रहा है, वो आपको डिप्लीट कर रहा है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और आप उसको छोड़ नहीं सकते, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें,
3: अच्छी बात है। और नहीं छोड़
4: कोई
3: सकते,
4: जरूरी तो नहीं है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सारा जीवन बिताना है। अगर आपके पास वो पावर है या पॉसिबिलिटी है, पावर भी नहीं, पॉसिबिलिटी है, कई बार वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक होते हैं, आप छोड़ सकते हैं, फैमिली नहीं छोड़ सकते ना, क्या करेंगे? एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ही हैं, झगड़ते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, वो अभी अडल्ट नहीं है, कहाँ जाएंगा छोड़ करके? तो फिर अपने को इतना स्ट्रांग बना लें कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से अपने को प्रोटेक्ट कर सकें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। तालेकर कृष्णानंद जी लिखते हैं कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हमारा अस्तित्व क्यों है।
3: कभी कभी ये हम क्वेश्चन तब पूछते हैं जब थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं।
2: परेशानियां ज्यादा होती तभी,
3: तब लगता है ये क्या है, जीवन ही क्यों बनाया, भगवान ने क्यों बनाया, सुख दुख क्यों बनाया। एक्चुअली पर्पस है लाइफ का टू लिव
2: जी।
3: आप एंजॉय करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप कभी कभी डिफिकल्ट चैलेंजेस हो या उसमें भी आप कुछ सीखते हैं। सो द होल आइडिया इज टू ग्रो, टू लिव, टू एक्सपीरियंस, इसलिए हम एग्जिस्ट करते हैं।
2: वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। वैसे एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे, कार्ल जंग नाम था उनका, और वो लिखते हैं कि the mere purpose of existing is primarily to light the life of an inner being. तो अगर हम खुद को हमेशा अंदर ऐसी experiences देते रहें जिससे inner power हमारी बढ़ती रहे और अंदर हम बहुत अपने जोत जलाते रहें, तो वो एकमात्र बहुत खूबसूरत तरीका है जीवन जीने का।
3: See, realization होना कि हम being हैं। हम भले doing mode में ज्यादा रहते हैं पर हम being है जिसने एक physical body ली है। और इसीलिए हमारी जो एग्जिस्टिंग का पर्पस है टू बी पीसफुल, टू बी लविंग, टू बी कंपैशनेट, टू बी काइंड। और बीइंग में होकर के फिर हम जो भी करते हैं, उस जो भी हमारा रोल होगा, वो बीइंग की पर्सनालिटी उसके अंदर आती है,
2: उससे ऑटोमेटिकली आएगी।
3: एज लॉन्ग एज आप बीइंग का ध्यान रखते हैं, आपको हमेशा फील होगा आपकी लाइफ बहुत फुलफिलिंग है।
2: अच्छा,
3: रोल से मैटर नहीं करेगा। आप नर्स भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपका कोई भी रोल होगा, बट अगर आप बीइंग में रह करके वो रोल प्ले करेंगे, यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ एंड योर लाइफ।
2: वेरी नाइस।
3: आप खुद भी जॉयफुली वो रोल प्ले करेंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट सम डिफरेंस। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने की जरूरत नहीं है, जरूरी है कि वो रोल हम कैसे प्ले करते हैं। कभी कभी बहुत सिंपल सा भी रोल होगा, सिंपल सा भी व्यक्ति होगा, वो कुछ ऐसा कह करके चला जाता है या कुछ
2: बहुत प्रोफाउंड होता है,
3: बहुत प्रोफाउंड होता है। सो एज लॉन्ग एज आप बीइंग स्टेज पर हैं, यू आर एग्जिस्टिंग एंड यू आर प्लेइंग योर रोल वंडरफुली।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती।

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श मिले।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरणामृत गोमुख से गंगा सागर तक युगों युगों से श्रद्धालुओं को मुक्ति दिलाता रहा है।

0: रिचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, गिल्ट से बाहर कैसे निकलें जब गलती सुधारी ना जा सके। अगर आपसे गलती हो गई हो, आप उसे दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपको माफ नहीं करता या अपनाने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए?
3: बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो गिल्ट क्या होता है, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, लेकिन गिल्ट अच्छा नहीं है
2: जी।
3: गिल्ट होता है कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स। रियलाइजेशन जरूरी होता है, आपने रियलाइज किया कि आपने गलती करी है, लेकिन गिल्ट होता है मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, नेगेटिव थिंकिंग है। वो आपको डिप्लीट करती है और चांसेस हो जाते हैं कि आपसे दोबारा गलती होगी।
2: ये बहुत जरूरी समझना।
3: हाँ, क्योंकि आप जितने कमजोर होंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो 1 second ऑफ गिल्ट इज इम्पोर्टेंट। आप उसको 1 second ऑफ गिल्ट बोले या रियलाइजेशन बोले, वो रियलाइज करना जरूरी है। जिन्होंने सवाल लिखा उन्होंने रियलाइज किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हमारे से गलती ही नहीं हो ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला, मना जो दौड़ता है वही गिरता है, जो चलता है वही फिसलता है। अगर आप कुछ करेंगे तो आपसे कभी ना कभी भूल हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए कि वो भूल अगर आप दोबारा करते हैं तो हम कई बार कहते हैं ये चॉइस है। आप फिर तीसरी बार करते हैं तो ये हैबिट है, चौथी बार करते हैं तो ये तो कैरेक्टर है, वो अलग चीज है। लेकिन आपने एक बार, आपसे कुछ हुआ, आपने उस चीज को रियलाइज किया और आपने उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया, फिर भी अगर सामने वाला नहीं स्वीकारता तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इस प्लेटफॉर्म पर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम में से कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हो। हम सब गलतियां करते हैं, हम रियलाइज करते हैं, हम सीखते हैं, हम बेटर बनते हैं। और हमारे पार्टनर का ये, हम दोनों पार्टनर माना जो भी रिश्ते में है, लक्ष्य होना चाहिए कि हम दूसरा चांस दे कि व्यक्ति अपने को बेटर वर्जन बना सके। यही तो हमारा रोल है। पर कभी कभी हम इतने इमोशनली वीक होते हैं कि उनकी गलती से हम इतने हर्ट हो जाते हैं और उस हर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते और उसके लिए कंटिन्यूस किसी दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छा व्यक्ति खो देंगे।
2: कभी कभी ये भी होता है कि शायद जो चीज है जिस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है या जो गलती है वो शायद इतनी बड़ी है जिसके लिए सामने वाला आपको नहीं माफ करना चाहता। इट कुड बी अडल्ट्री, इट कुड बी समथिंग जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
3: कितनी भी बड़ी हो, अडल्ट्री भी हो, कितनी भी बड़ी हो, देन ऑल्सो आई फील कि अगर वो रियलाइज करते हैं एक चांस तो देना चाहिए। हैबिट है कि नहीं वो आप देखें। एक होता है कि आपने चांस दिया पर वो उनका संस्कार है, वो बार बार करते हैं, रियलाइज भी नहीं करते, उनके मन में उस चीज का कोई पश्चाताप भी नहीं है, वो है ही ऐसे इंसान। तब आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। पर आप कहें कि वो एक बार भी ऐसा नहीं करेगा, ये होना ही नहीं चाहिए।
2: चांस तो देना बनता है
3: हर एक को। आज हमारे से भी कोई गलती हो सकती है, अगर हम गलती करते हैं और हमें कोई चांस देता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कहते हैं दोबारा नहीं हम कर सकते, हम इस व्यक्ति का फेथ नहीं तोड़ सकते। तो ये कह देना कि नहीं ये रेड फ्लैग है, ये एक बार हो गया तो रिश्ता ही खत्म, ऐसा नहीं होता। दो जने हैं रिश्ते के अंदर, हर चीज के लिए आपको तैयार होना चाहिए और कम से कम एक चांस तो हर एक को देना ही चाहिए। इतना जल्दी रिश्ता खत्म करना, वो भी तो फिर रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं रहे ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, कुछ सवाल आए हैं। निकिता गुप्ता लखनऊ से लिखती हैं कि नमस्ते मैम, मैं बहुत परेशान रहती हूं अपनी बीमारियों से। इस कारण बहुत चिड़चिड़ी रहती हूं और गुस्सा भी बहुत आता है। बेटा सुनता नहीं है, छोटा है, मन में नेगेटिविटी है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। लॉन्ग टाइम से तबीयत खराब रहती है। बेटे की फिक्र और बीमारी के कारण जॉब भी छोड़ दी मैंने। प्लीज सजेस्ट करें कि मैं पॉजिटिव और खुश कैसे रहूं। फैमिली में भी कम सपोर्ट मिलता है हस्बैंड और सास का।
3: बीमारी का पेपर इजी नहीं होता है, क्योंकि और किसी भी चीज से आप थोड़ा किनारा कर पाते हैं, लेकिन बॉडी से आप किनारा नहीं कर सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट, होता है वेरी चैलेंजिंग टाइम ऑफ लाइफ, अगर एक के बाद एक बीमारी आती है। लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि पेन इज कंपल्सरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। जिसका ये मतलब है कि शरीर को बीमारी है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग है। तो शरीर को कोई बीमारी है, आप उसका ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मन बीमार हो गया कि मेरे को ये बीमारी क्यों आ रही है, मेरे बच्चे का क्या होगा, इतने समय से बीमारी आ रही है, हमारे घर में तो कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, जब एक बार आप ये सोचना शुरू कर देते हैं तो वो शरीर की बीमारी भी ठीक नहीं होगी, चाहे डॉक्टर कितना भी ट्राई कर ले,
2: नुकसान ही करेगी आपको उल्टा।
3: मतलब बहुत देर लगेगी आपकी जो रिकवरी है, आपकी जो बीमारी है उसको ठीक होने में समय लगेगा। सेकेंडली, आप अंदर में इरिटेट हो रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर, तो आप वो इरिटेशन अपने बच्चे को रेडिएट कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल,
3: इसलिए वो बच्चा आपसे दूर जा रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा। और फिर जब हम ऐसे इरिटेटेड रहते हैं तो घर का माहौल भी सारा वो हो जाता है। तो बीमारी का पेपर बाहर से आया था, लेकिन बाकी जो सारे पेपर है, एक रिश्ता खराब हो रहा है, घर का माहौल खराब हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बीमारी में आपने अपना ध्यान नहीं रखा, अपने मन का ध्यान नहीं रखा। तो इस बीमारी में भी आप कहें, बीमारी भी कल्याणकारी है। परमात्मा कहता है हर चीज कल्याणकारी है। आप इस बीमारी को भी कहें, आई है चली जाएंगी, हर सीन आती है चली जाएंगी, ट्रीटमेंट भी लेते रहें, लेकिन अपने मन का ध्यान रखें, मैं खुश हूँ, शरीर बीमार है।
2: सही बात है, ये बोलते रहें आप,
3: अपने को बार बार याद दिलाएं, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आप खुश रहेंगे, खुशी मन की स्थिति है। जब आप अपने को कहेंगे चलो शरीर बीमार है लेकिन हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बहुत अच्छा परिवार है, इतना अच्छा बच्चा है, भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है, एक विघ्न आया वो भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आपको छोटी लगेगी। पर आप कहेंगे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो फिर वो छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है।
2: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। तुम्हारी चाय रेडी है, कॉफी रेडी है, ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए ढेर सारी गॉसिप, गपशप, न्यूज, मस्ती एंड मच मोर। और साथ साथ में आज मेरे पास तुम्हारे लिए कॉन्टेस्ट भी है जिसमें तुम जीत सकते हो कुछ अमेजिंग प्राइजेस। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी लाइफ का फंडा काफी सिंपल है। वो ये कि लाइफ के रेडियो पर खुशियों का वॉल्यूम बढ़ाओ, सैडनेस को थोड़ा सा साइड ट्रैक पे रखो और मेन कैरेक्टर एनर्जी में आकर पूरा दिन मिर्चीदार बनाओ। ऐसे पूरा दिन मिर्चीदार बनाने के लिए तुम्हारी सुबह मिर्चीदार बनाती हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर तुम्हें अभी बहुत कुछ मिलने वाला है अगले कुछ घंटों के लिए। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033-64-7244, दैट्स माय नंबर। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vida para la burga. Mirchi, burga.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्च पे।
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकु। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर सुबह सुबह तुम विशाल मिश्रा के गाने गुनगुना रहे हो तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि आज तुम जीत सकते हो विशाल मिश्रा के पागलपन टूर 2026 के टिकट्स राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। एनसाई यूएसए इंक प्रेजेंट्स विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी फॉर पागलपन टूर 2026। द कॉन्सर्ट इज हैपनिंग फ्राइडे 26th ऑफ जून को 7 PM ऑनवर्ड्स एट हार्ड रॉक लाइव एट अटीज अरीना अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में। अब कॉन्टेस्ट टाइम है। सिंपल सा सवाल मैं पूछने वाली हूँ, उसका मिर्चीदार सा आंसर देना है। 3 ऑप्शंस भी देने वाली हूँ मैं। मुझे बताओ विशाल मिश्रा इज परफॉर्मिंग लाइव इन विच स्टेट। ऑप्शन ए न्यू जर्सी, ऑप्शन बी जुपिटर एंड ऑप्शन सी झुमरी तलैया। प्रीटी इजी राइट। फटाफट से अपने आंसर्स भेजो, या तो व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। मैसेज करना कैसे, सबसे पहले लिखना है विशाल मिश्रा, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है और उसके बाद ऑप्शन ए बी या सी जो भी तुम्हें सही लगता है फटाफट से भेजो मुझे अभी की अभी, ताकि तुम जीत सको इस पागलपन टूर के टिकट्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: G Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. और अब हम चलने वाले हैं हमारी टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर. स्टार्टिंग इन 1815, द बैटल ऑफ वाटरलू. आज के दिन नेपोलियन बोनापार्टे फेस्ड हिज फाइनल डिफीट. एंड 1858 में इंडिया रिमेम्बर्स द ब्रेवरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता था. वो बिकेम अ सिंबल ऑफ करेज आफ्टर फाइटिंग इन द अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. जंप टू 1940, फ्रॉम लंदन चार्ल्स डे गॉल मेड हिज लेजेंडरी रेडियो अपील आस्किंग पीपल टू कीप रेजिस्टिंग ड्यूरिंग वन ऑफ हिस्ट्रीज टफेस्ट टाइम्स. फिर आया 1946, गोवा रेवोल्यूशन डे. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हेल्प्ड स्पार्क अ मूवमेंट इन मारगांव दैट बिकेम अ मेजर टर्निंग पॉइंट in Goa's journey away from colonial rule. Then 1956 mein India passed the Hindu Succession Act. And in 1983, absolute icon moment, Dr. Sally Ride became the first American woman in space. और अब अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स की बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक कॉन्टेस्ट में एक सवाल पूछा था जिसका मिर्चीदार जवाब देकर तुम्हें मिल सकते हैं विशाल मिश्रा के कॉन्सर्ट के टिकट्स. बिकॉज IUSA इंक ब्रिंग्स विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी पागलपन टूर 2026 के लिए, जो की होने वाला है 26 जून को. अब कॉन्टेस्ट का सवाल बड़ा ही सिंपल है. विशाल मिश्रा इज परफॉर्मिंग लाइव इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है न्यू जर्सी, ऑप्शन बी है जुपिटर एंड ऑप्शन सी है झुमरी तलैया. फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजो या तो व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 पर, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. लिखना तुम्हें क्या है, सबसे पहले लिखना है विशाल मिश्रा, उसके बाद अपना पूरा नाम और उसके बाद ऑप्शन ए बी या सी. सही जवाब लिख कर मुझे भेज देना है मेरे हैंडल नेम पर, दैट्स MIRCHIPRIS. और अभी फटाफट से मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए चलाती हूँ. मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अब सुनने वाले हो वेदर का फोरकास्ट। राइट नाउ इट्स अराउंड 69 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स लिटिल बिट क्लाउडी एंड रेनिंग, सो इफ योर हेयर हैड प्लान्स टुडे, आज वेदर ने तो सब कुछ कैंसिल कर दिया है। हेड्स अप, वैसे थंडरस्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टिल नेक्स्ट 1 आवर, सो इफ द स्काई सडनली स्टार्ट्स टू मेक दिस सराउंड साउंड टाइप का म्यूजिक, तो समझ जाना कि थंडरस्टॉर्म चालू हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्लाउड्स जो है वो सेटल हो जाएंगे एंड द डे विल स्टार्ट बिहेविंग इटसेल्फ। टुडेस टेम्परेचर स्विंग्स फ्रॉम 68 डिग्रीज फारेनहाइट टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट एंड यस इट विल फील लाइक 69 टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट। और हमारी देसी फैमिली के लिए इसका मतलब है कि हुडी पहनो, चाय पकौड़े वाला मौसम चालू हो चुका है। वैसे मॉर्निंग में ये हाल रहने वाला है, लेकिन आफ्टरनून आते आते तुम्हें थोड़ी सी एसी की जरूरत पड़ने वाली है और इवनिंग आते आते फिर मूड थोड़ा सा कूल हो जाने वाला है। फन फैक्ट ये है कि आज एक्चुअली इज अ लिटिल बिट वार्मर देन यस्टरडे, यानी कि आज तुम्हें थोड़ा सा लाइट जैकेट पहनना पड़ेगा। लेकिन बाहर जाते वक्त SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और अभी मिर्चीदार गाने मेरे पास प्रिपेयर्ड है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर। फटाफट से मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क. इट्स हॉट.

فطرت.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब सुनने वाले हो खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले, एट द बायलैटरल मीटिंग ड्यूरिंग द G7 समिट, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द इंडियन PM नरेंद्र मोदी मेट एंड डिस्कस्ड अ रेंज ऑफ टॉपिक्स। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ट्रंप आल्सो स्पोक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन्स पोजीशन ऑन वुमेन्स स्पोर्ट्स एंड यूथ रिलेटेड पॉलिसीज व्हाइल प्रेजिंग इंडियाज लीडरशिप। Number 2 पर पोर्टुगल कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ट बिकेम द ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर टू स्टार्ट अ फीफा वर्ल्ड कप मैच एट 41 इयर्स एंड 132 डेज। ऑल्सो जॉइंस द वेरी एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ प्लेयर्स अपियरिंग इन 6 फीफा वर्ल्ड कप्स। And number 3 पर इंडिया रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट एवर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टोटल, पुटिंग अप 209 फॉर 5 अगेंस्ट नेदरलैंड्स। बिग चीयर्स टू स्मृति मंदाना विद 74 एंड शेफाली वर्मा विद 55। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua, la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ले मोबाइल, वो लेके आया है, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना मैंने
2: आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता रहे,
2: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है, आप फालतू
3: हैं। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू को।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
5: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। सो सिंगर केटी पेरी रिसेंटली ओपन्ड अप अबाउट लव एंड शेयर दैट बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद फॉर्मर कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो हैज ट्रांसफॉर्म्ड हर। उनका कहना है that having love in her life changed her perspective. She spoke about how having love in her life changed her perspective and even referenced that classic thought. Maybe all those love songs weren't exaggerating at all. केटी का ये भी कहना है कि how sometimes things we call cliches become cliches because people keep finding truths in them. And अब love की बात हो ही रही है तो तनिष्क की बात कैसे ना हो। तनिष्क presents Festival of Exchange, जहां पर तुम अपना पुराना गोल एक्सचेंज करा सकते हो एंड यू कैन गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम on exchanged gold upon diamond purchases. साथ साथ में 0% deduction on exchange of old gold above 9 carats. Terms and conditions applied. फिलहाल प्रिसिला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर, आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार bangers. Meanwhile, you go and check out my Instagram and X. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS. एंड WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नमस्ते माय दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे इज कमिंग ऑन 21st of June, मिर्ची ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते हम देंगे लाइफ चेंजिंग, रेपुटेशन डैमेजिंग, बिल्डिंग, कम्प्लीटली योर टेस्ट टाइप की मिर्ची योगा क्लासेस। और आज की क्लास है, प्लीज वेलकम, शादी नहीं हो रही, क्रश अप्लाई नहीं कर रही, आसना। मिर्ची योगाश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ गुरु प्रसन्नंदा। सब लोग योगा मैट पर आ जाइए, फोन को सामने रखिए, व्हाट्सएप या इंस्टा डीएम खोलिए, लास्ट सीन ऑब्जर्व कीजिए। अब स्पाइन सीधी, होप लो, एक्सपेक्टेशन लोअर, सांस अंदर, मैसेज मत भेजो, सांस बाहर, स्टोरी मत चेक करो। अब राइट हैंड को हल्का सा ऊपर उठाओ, जैसे मे बी दे आर बिजी, और लेफ्ट हैंड से डिग्निटी को पकड़कर नीचे ले आओ। एडवांस्ड वेरिएशन, फोन को उल्टा रख दो, 2 मिनट बाद वापस चेक करना है, फिर फोन उठाना पड़ेगा। रिपीट टिल इन अ पीस तुम्हारे क्रश के साथ साथ क्रश हो जाए। गुरु का साइड नोट, अगर 11 राउंड्स के बाद भी रिप्लाई नहीं आया तो समझो तुम्हें निर्वाणा की प्राप्ति हो चुकी है, अटैचमेंट रिलीज हो चुका है और ऑरा क्लेंस हो चुका है।
2: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
3: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
1: वैसे रियल योगा का आइडिया सिंपल है, यू नो, बैलेंस, माइंडफुलनेस और बॉडी को थोड़ा सा फिट रखने के लिए थैंक यू बोलना पड़ता है। लेकिन मिर्ची पर फिलहाल इस हफ्ते तुम्हारी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी ट्रेन किया जा रहा है मिर्ची के योगा क्लासेस के साथ। अब मुझे बताओ तुम्हारा फनीएस्ट योगा पोज कौन सा है, या फिर एक ऐसा योगा पोज जो तुम सीखना चाहते हो। द सैलरी आई और गई स्ट्रेच, द वीकेंड लॉन्ड्री लंजेस योगा पोज, एंड लैपटॉप को फाइनली बंद करो मुद्रा। फटाफट से मुझे मैसेज भेजो, व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर कनेक्ट करो विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड बेस्ट पोस्ट डिस्क्रिप्शन विल मेक इट ऑन एयर। अब जाने से पहले ये याद रखो, इफ दे रिप्लाई breathe, if they don't reply also breathe, or sundaram mirchi mornings mere yani ki prasala।

0: दिस इज प्रिसिला विथ यू मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है.
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,240 $4,240 पड़ रहे हैं. उसके साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं. कैसे, आइए राज ज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं. और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के. आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: देयर यू गो. गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलती है। सबसे पहले, द यूएस एंड ईरान हैव साइंड अ एमओयू एम्ड एट ईजिंग टेंशंस एंड मूविंग टुवर्ड एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। स्टेटमेंट्स अराउंड द अग्रीमेंट मेंशन्ड होप्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड रीओपनिंग मूवमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स द नेक्स्ट बिग स्टेप। Number two, Pakistan had announced plans linked to an official signing event in Switzerland, but later updates clarified that the agreement process happened digitally instead. The announcement was revised afterwards. And number three, Portugal's Cristiano Ronaldo had a quieter opener in the FIFA World Cup 2026, and after the match ended in a draw, some fans in the crowd started chanting another football legend's name. Meanwhile, Ronaldo at 41 is still out there playing World Cups. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं दीदी,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अब हम बातें करने वाले हैं सितारों की।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: It is Yanimesh Rashi, feeling a little lost lately. Don't panic, no need for a dramatic life reboot. Bas retrace your steps, make one tiny adjustment and boom, comeback season शुरू हो जाएगा। Lucky color is electric blue, lucky number is 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, रीसेंट वीक्स ने थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट डाल दिया है लाइफ में, लेकिन कॉस्मिक कस्टमर केयर का कहना है गुड न्यूज डिलीवरी इज ऑन द वे, तो स्टे ओपन। लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, यस मे बी यू टुक ऑन टू मच, लेकिन समहाउ केओस बिकेम प्रोडक्टिविटी। Hashtag respect. Keep chewing through life one to-do list at a time. Lucky color for you is pearl white. Lucky number is 5. Cancer yani Karak Rashi. Universe ka kehna hai, your good fortune isn't random. You earned it. To guilt mat lo yaar, compliments accept karo aur chill maro life mein. Lucky color for you is sapphire. Lucky number is 5. Leo yani ki Sinha Rashi. Someone may test your patience today. Don't react. Smile and just walk away. Nothing annoys drama more than inner peace. Lucky color is burnt yellow. Lucky number is 9. And last but not the least, Virgo yani Kanya Rashi. Things felt delayed. Cosmic traffic is clearing. धीरे धीरे से सब कुछ सही हो रहा है. Patience रखो आज और पे ऑफ मिलेगा कल. और हाँ, don't refresh your life every 5 minutes. Lucky color is black. Lucky number is 19. And that's it for Rashi Zone Part 1. Rashi Zone Part 2 लेकर आऊंगी मैं थोड़ी सी देर में on Mirchi Mornings. मेरा नाम है Priscilla. मुझे connect करो Insta और X पर. मेरा handle name है Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर number है 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

bate bine, bate. Și un buhe bade șan.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: इधर मैं मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड जस्ट लाइक दैट अनदर कप ऑफ चाय, अनदर कम्यूट, अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर एंड अनदर डे ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स हैज कम टू एन एंड. अभी रैप अप का टाइम आ चुका है, बट बिफोर आई डिसअपियर लेट मी टेल यू दिस क्विक अपडेट. द यूएई यानी कि द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज अनाउंस्ड न्यू रूल्स अराउंड सोशल मीडिया एक्सेस फॉर यंगर यूजर्स, बैनिंग पर्सनल सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 and limiting access to full platform features. It joins countries including the UK, Australia and Malaysia in tightening online access rules for kids. And honestly, whether you're team screen time or team go outside and play, one thing every Desi household agrees on is parents somehow always know when you're online, even if they don't follow you. For my expat fam, raising little global citizens, balance hi asli flex hai yaar. A little scrolling, a little sunshine, thoda sa family gossip is a perfect combo. And now, my favorite part. Tumhe bye bye bolne ke pehle kuch mirchidar bangers tumhare liye line up kar diye already. To unko enjoy karo aur jaakar mujhe bhi follow kar lo. Insta aur X par mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033. Mirchi, that's 9033647244. Filhal, stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये गाना अगर किशोर कुमार गाते तो कैसा होता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं नहीं, मैं आपको कोई एआई टूल यूज करके उनकी आवाज में गाना नहीं सुनाने वाली हूँ। मैं तो ये सोच रही थी यार कि आज तो हम ये सब कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा सयारा का टाइटल ट्रैक इंटरनेट पे किशोर कुमार साहब की आवाज में भी अवेलेबल है, एंड इट इज साउंडिंग सो ब्यूटिफुल। तो आजकल हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पहले के टाइम की खूबसूरती शायद यही थी कि इतने रिसोर्सेज या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहुत सारा कुछ बस ख्यालों में, इमेजिनेशन में, इनमें होता था और हमारे बस के बाहर होता था, वही उसकी खूबसूरती थी। अब जरा आप इमेजिन कीजिए, बस उसको कुछ करना नहीं है, बस इमेजिन कीजिए कि आने वाला गाना जो किशोर कुमार साहब की आवाज में है वो अगर मुकेश जी गाते तो कैसा होता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: मिर्ची
4: नवीद
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू के लिए क्या करना पड़ेगा
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ।
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
3: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे।
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आशा पारेख जी अपने ग्रोइंग अप इयर्स में एकदम टॉम बॉय थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने शेयर किया था।
1: दरअसल ये हुआ है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में सब लड़के ही थे और मैं एक लड़की, तो जो लड़के खेलते थे वही मैं खेलती थी। जैसे वो एक पत्थर मारने की गेम थी, पत्थर मारने वाली गेम सीख ली, काइट फ्लाई करने की टंगे भी उड़ाई है, फिर मार्बल से भी खेली हुई हूँ मैं। इस तरह से वो सब जो हरकतें थी वो लड़कों जैसे हो गई।
0: इसीलिए उनके उछल कूद वाले जो रोल होते थे वो काफी मजेदार होते थे, ज्यादा नेचुरली आते होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: न सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: 1971 में एक मूवी आई थी बुड्ढा मिल गया, याद है ना आपको?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मिड 80s में ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड में ना एक ए रेटेड मूवी आई थी जिसका नाम था मुझे बुड्ढा मिल गया। अभी बहुत सारे NRIs जब तब के वीडियो स्टोर्स में जाके वीडियो कैसेट लेकर आते थे तो वो 1971 वाली बुड्ढा मिल गया समझ के ले आते थे, और जब वो VCR में उसको चलाते थे तो उनको पता चलता था कि ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर।
2: और फिर वो वीडियो स्टोर वाले के पास ऐसे दंदनाते हुए गुस्से में जाते थे कि भाई ये क्या दे दिया तुमने।
0: कुछ लोग नहीं भी जाते थे, वो खुश हो जाते थे कि बेटर कॉन्टेंट देखने को मिल गया है।
1: Anyway, हम अपने कंटेंट की तरफ आते हैं।
0: 1971 वाली बुड्ढा मिल गया, इसका ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन।

0: आपको पता है लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी साहब क्या मास्टर आदमी थे?
1: फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: जब वो गाने लिखते थे ना, तो अक्सर गानों में 3-4 अंतरों की जरूरत होती थी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये इतने टैलेंटेड थे कि 20-40 अंतरे भी लिख देते थे कि भाई खुली वैरायटी है, तुमको जो उठाना है उठा लो।
1: ऐसा ये गाना था
0: जो भाइयों बहनों उस साल गीतमाला में पायदान नंबर 1 पर था। कंपोज्ड बाय रविंद्र जैन, सैंग बाय लता मंगेशकर। ये अपने टाइम का सुपरहिट गाना सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से।
1: ऑफ कोर्स ब्यूटीफुली रिटन बाय हसरत जयपुरी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन मिर्ची।

छोटे होते ना मुझे फिल्मों में बड़ी कंफ्यूजन होती थी, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, अमर अकबर एंथनी की मल्टी स्टार फिल्म्स जो होती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब कभी मुझे लगता था नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ उछल कूद कर रही है, गाना गा रही है वो एक में और एक तू, फिर वो तारिक शाह क्या था वो हीरो का नाम भूल गई मैं, उनके साथ वो गाना गा रही है लिख कर हम दीवाना दिल। फिर उसी फिल्म में जीनत अमान विजय अरोड़ा के साथ चुरा लिया है तुमने जो दिल को वो वाला गाने में परफॉर्म कर रही हैं। फिर हम किसी से कम नहीं का जो कवाली वाला टाइटल ट्रैक था उसमें वो ऋषि कपूर के साथ है, तो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ नहीं आता था। लेकिन एक बात बताऊं, छोटे होते वाली ये जो टेंशन्स जो कंफ्यूजन्स होती थी ना ये अच्छी होती थी, कितनी प्यारी इनोसेंट हार्मलेस सी होती थी। बड़े क्या हो गए, दिक्कतें ही बदल गई भाई, हमें नहीं खेलना ये बड़े होना बड़े होना, हमको वापस छोटा कर दो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vieta la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मतलब तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन ले गया,
2: डिस्प्ले आ रहा है,
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले, तो फोन ठीक
2: तो
3: नहीं होते
2: थोड़ी ना।
3: आपने नहीं बताया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, वहीं
3: जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: अब गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई साहब, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर, काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: क्या कहना माधुरी दीक्षित का और क्या कहना उनके डांसर्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्या कहना था माधुरी दीक्षित का, उनके वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में एक इंटरव्यू में सुनी उन्होंने क्या कहा था।
1: 1 2 3 ऑफकोर्स मेरा सबसे फेवरेट गाना रहेगा हमेशा, क्योंकि इस गाने ने मेरी एक पहचान बनाई। तब तक मैं सरोजी के साथ काम कर चुकी थी पहले, उत्तर दक्षिण में उन्होंने गाने किए थे मैं, लेकिन क्लासिकल फॉर्म में ज़्यादा किए थे। तो पहली बार ऐसे कुछ वेस्टर्न इंडियन बॉलीवुड ऐसा मिक्स था, तो सरोजी ने कहा कि आपको इसके लिए रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो रिहर्सल की हमने, गाना शूट हुआ, जब आया तो लोगों ने इतना पसंद किया।
0: तो देरी नहीं करते हैं, फटाफट सुन लेते हैं ये ढेंटड़ैन गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कादर खान साहब एक अलग ही विरली वखरी असीम शख्सियत थे भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सुनी उन्होंने अपने ओरिजिन के बारे में क्या शेयर किया था, कहाँ से वो और उनकी फैमिली बिलोंग करते थे।
1: प्रीन की मेरी वालदा थी क्वेटा बलोचिस्तान की, और मेरे वालिद जो थे वो कंदहार के थे, और ये लोग जाके सेटल हो गए थे काबुल में। वहाँ जो है मुझसे पहले तीन मेरे भाई हुए, वो 8-8 साल की एज को पहुंचते थे और मर जाया करते थे सर। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा डर गई और वो कहने लगी कि ये जगह की हवा जो है वो मेरे बच्चों को साजगार नहीं है, यहाँ मेरे बच्चे जी नहीं पाते हैं, मैं यहाँ से जाऊंगी। गरीब घराना सर, सुबह रोटी खा ली तो दोपहर का ठिकाना नहीं, दोपहर में अगर कुछ बन गया खाना पानी तो रात का भरोसा नहीं। ऐसे गरीब घर में अफगानिस्तान काबुल से कहाँ जाएंगे वो, बहरहाल चल पड़े लोग। होते हुआते धक्के खाते, ये कुदरत जो है मेरी जिंदगी का स्क्रीन प्ले लिख रही थी, और मैं उस जमाने में जो है ये ठोकरे खाते खाते धक्के खाते खाते ये बम्बई आए थे।
0: क्या बोलता था ये बंदा भाई, और आप कभी इनके इंटरव्यूज आराम से सुने ना तो आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी, क्या इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है इनकी। इसी बात पे एक इंस्पायरिंग गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1974 की रोटी कपड़ा और मकान वीरू देवगन साहब की एज स्टंट डायरेक्टर पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वीरू देवगन साहब द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्शन डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जो अजय देवगन जी के फादर भी थे। बहुत सी फिल्मों में इससे पहले ये एज स्टंट मैन काम कर चुके थे। और आपको पता है ये जब 13 साल के थे, लेट 40s की बात है, तब ये पंजाब से भागकर बॉम्बे आ गए थे। फिर उन्होंने बहुत छोटे मोटे काम किए और ये सब करते करते वो ना जो मोहल्ले के लड़कों की गैंग वॉर टाइप होती है ना, उसमें शामिल हो गए, वहां लड़ाई झगड़े करते थे। तब आप सोचिए उस टाइम के स्टंट डायरेक्टर स्टंट कोऑर्डिनेटर रवि खन्ना साहब थे, उन्होंने इनको एक स्ट्रीट फाइट में नोटिस किया और इनको उठा के ले आए कि भाई अपनी लड़ाई करने वाली तुम्हारी जो कला है उसको यहाँ इस्तेमाल करो। कई बार लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है अनएक्सपेक्टेडली। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.

0: ऋषि दा की फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कुछ दिन पहले ना मैंने ऋषिकेश मुखर्जी की एज डायरेक्टर डेब्यू फिल्म जो थी 1957 की मुसाफिर वो देखी और अच्छी लगी मुझे फिल्म। और आप तभी देखें अगर आपको सर्टेन सैड टोन्स इन द फिल्म ओके हैं, मतलब थोड़ी बीच बीच में वो सैड भी हो जाती है। एक्चुअली उसमें क्या है, उसमें तीन कहानियां हैं। तो पहली स्टोरी का एंड अच्छा है, दूसरी स्टोरी का एंड अच्छा है, तीसरी स्टोरी का एंड सैड है। हालांकि वो जो थर्ड स्टोरी है ना वो बहुत ही पॉपुलर एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी है। तो किसी दिन आपका हैप्पी प्लस सैड मूवी ऐसा देखने का सीन हो तो आप देख सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, स्लो है, सैड टोन वाली पिक्चर है थोड़ी सी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और अभी हम यहाँ पे हैप्पी रोमांटिक टाइप का गाना सुन लेते हैं मिर्ची पर।
1: Ha ha ha ha ha!

0: Milci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidvala murga. Milci, murga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
1: नहीं
2: दीदी,
1: मैं कल को फोटो
2: खींचे। अरे लेंस ऐसे
1: पूरे कपड़े
2: कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए?
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

लोग 3-4 मिनट के गाने नहीं सुन पाते हैं, 12 मिनट की कव्वाली कौन सुनेगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कहा गया था यस्टरडेज के प्रोमिनेंट म्यूजिक कंपोजर रोशन नागरथ जी को, जो ऋतिक रोशन के ग्रैंडफादर भी थे और जिन्होंने कंपोज की थी 1960 की फिल्म बरसात की रात की आइकॉनिक कव्वाली। ऐसा सुनने में आता है कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ 24 से 27 घंटे लग गए थे और 72 से 75 रीटेक्स। अब उस टाइम पे तो लाइव होता था ना सब, किसी एक से गलती हुई तो पूरा गाना वापस से रिकॉर्ड। और किन किन दिग्गजों ने ये गाना गाया है भाई, मन्ना डे साहब, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, SD बातिश और पता नहीं कितने कोरस सिंगर्स और कितने म्यूजिशियंस। इसमें कुछ पोर्शंस में ना जहाँ पे सिंगर्स ने आलाप लिया है, वहाँ पे लिटरली ऐसा लगता है कि ऊपर वाला आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, ये लिरिक्स रेवोल्यूशनरी हैं। जब भी आप इनको सुनेंगे ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो पूरा गाना ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तो भी कुछ लाइंस बहुत पसंद है, जैसे खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क, ये है इश्क इश्क। जी, इसी कव्वाली का दूसरा पार्ट, पहले हमने 5 मिनट सुने थे, अभी बचे हुए 7 मिनट्स राइट है पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मुझे घूंघट पटकी। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

वाह साहब, जगजीत सिंह साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनकी आवाज में उनकी कंपोज की हुई, साथ में चित्रा सिंह जी ने भी कंपोज की है ये गजल, और इसे लिखा है सईद राही साहब ने। और दोस्ती के बारे में कुछ एक दो शेर अर्ज किए हैं। बशीर बद्र साहब ने लिखा है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। बशीर बद्र साहब ने ही लिखा है, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। अच्छा, इधर राहत इंदौरी साहब लिखते हैं, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। फिलहाल यहाँ पे ब्रेक ली जाए, म्यूजिकल ब्रेक, जहाँ हम दोस्ती वाले एकदम फिल्मी गाने सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ब्लू टर्कवाइज कलर की साड़ी में उछलती कूदती लहराती बलखाती हंसती गाती वहीदा रहमान जी याद आ जाती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। कैसे उन्होंने इस गाने को ना पूरी तरह से ऐसे ओन कर लिया, छा गई, मतलब देवानंद तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। और कितना ब्यूटीफुल गाना है जो एक तरह की फ्रीडम को डिस्क्राइब करता है। चलिए अगले गाने पे आते हैं अब, जिसके बारे में ऐसा सुनने में आता है कि इस गाने में जब जूही चावला ऐसे अंगड़ाई ले रही थी और उनका वो ऐसे गोल गोल घूमने वाला शॉट लिया जा रहा था, तो वो जो शॉट ले रहा था ना कैमरामैन ट्रॉली पे, वो जूही चावला को देखते देखते ऐसे फिसल गया, गिर गया। कयामत से कयामत तक का ये गाना सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: दोस्त अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर आप गलत चीजों को हाईलाइट करते हैं तो आप इक्वली गलत हैं।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, और पिछले कुछ दिनों से 370 रुपए वाली बिरयानी और उस बंदे के साथ साथ वो जो हमारे कमेडियन सर हैं उनको लेके जो ह्यू एंड क्राई क्रिएटेड है ऑन सोशल मीडिया इज मेकिंग मी थिंक लाइक दिस। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ओपिनियंस दे रहे हैं अपने वीडियोज के फॉर्म में, बट इनमें से ही बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली देखा है अपने पर्सनल ग्रुप में इसी तरीके के ऑब्जेक्टिफिकेशन रिमार्क्स करते हुए या वैसे रिमार्क्स पे इंजॉय करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए। तो अगर आप उस जगह पे अपने दोस्त को चुप नहीं करा पा रहे हैं, उसको कॉल आउट नहीं कर पा रहे हैं, देन ब्रो सोशल मीडिया पे इतनी डींगे हांकने से क्या ही हो जाएगा। कभी मौका मिले तो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से पूछिएगा कि वो ऑन अ डेली बेसिस ऐसी कौन कौन सी हरकतें झेलती है। वैसे मेरे एक रिव्यू पे रिसेंटली एक बंदे ने इसी तरीके से गाली गलौज की शुरुआत कर दी, मैंने उसको अपनी स्टोरी पे हाईलाइट भी किया, एंड अनफॉर्चुनेटली दो लोगों के अलावा किसी ने भी उस बंदे को कॉल आउट नहीं किया इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड दैट इज वाई माई फ्रेंड आई एम सेइंग कि अपने कम्फर्ट के हिसाब से अगर आप किसी गलत चीज को हाईलाइट कर रहे हैं देन यू आर इक्वली गलत इन दैट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieta la murga. Milci, murga. Milci.
1: It's Navid.
0: बोल रहा हूँ।
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
0: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं।
0: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है।
1: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
0: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो. It is the origin story of Deadly Girls. मैं बात कर रही हूँ अल्फा की, बाबू मोशाय, जिसका ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग. भाई साहब, इस मूवी में, इसके ट्रेलर में अनिल कपूर हो, बॉबी देओल हो, या फिर हमारे दो खूबसूरत मोहतरमाएं जो कातिलाना एक्शन करते नजर आ रही हैं, आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ, भाई साहब सबको देख के जो एक्साइटमेंट बंध गई है अबाउट द मूवी, आई जस्ट कांट कीप काम फॉर द 3rd of July when it will release in the theaters. बाकी शिव रवायल डायरेक्टोरियल एंड वायर एफ स्पाई यूनिवर्स की इस पहली फीमेल लेड फिल्म को लेकर मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट इसका लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया जब इस ट्रेलर के लास्ट सीन में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ग्रीक गॉड, बोले तो ऋतिक रोशन की आंखों ने अपना कैमियो दिखाया. तो अगर आपको फिल्म का ओवरव्यू चाहिए, देन गो वॉच द ट्रेलर, यू विल डेफिनेटली लव इट. कॉकटेल 2 की एडवांस बुकिंग्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तब तक 25,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं ऑलरेडी इस मूवी की अक्रॉस नेशनल चेन्स, विच इन रिटर्न विल सरपास द बॉक्स ऑफिस नंबर्स ऑफ है जवानी तो इश्क होना है फॉर द डे 1. बाकी होमी अदाजानिया डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, एज यू ऑलरेडी नो, शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं. सो 19th of June इज द डेट जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी. सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन. मेरी टिकट्स तो ऑलरेडी बुक्ड हैं. कुणाल खेमू अब डेली रियलिटी शो होस्ट के तौर पे डेब्यू कर रहे हैं. हाँ जी, पहले ये एक्टर थे, फिर डायरेक्टर बने, गाना भी गा लेते हैं, लिख भी लेते हैं, और भाई अब रियलिटी शो होस्ट. सो बेसिकली इस शो का नाम है अलायंस, जिसमें 16 कंटेस्टेंट्स होंगे विद शिफ्टिंग लॉयल्टीज, स्ट्रेटेजिक गेम प्ले एंड 42 एपिसोड्स इन 6 weeks. हर एपिसोड रोज 12 बजे ड्रॉप किया जाएगा एंड द शो विल स्ट्रीम फ्रॉम द 26th of June ऑन प्राइम वीडियो. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई जिंदगी ने तो बहुत गेम खेल लिए, अब थोड़ा आप मेरे साथ गेम खेलिए यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं हर रोज ढूंढ रही हूँ मिर्ची फिल्म ची। बेसिकली इस कॉन्टेस्ट के जरिए मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालना चाहती हूँ। तो करना कुछ खास नहीं है, आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति पे जाना है, मेरे DMs में स्लाइड करके अपना फोन नंबर मुझे भेजना है और फिर मैं आपको करूंगी कॉल और आपके साथ खेलूंगी ये बॉलीवुड गेम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन पे?
3: अनुष्का।
0: हाय अनुष्का, कैसे हो आप?
3: मैं ठीक, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक और बढ़िया हो जाऊंगी इफ यू विल प्ले दिस गेम विद मी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड का खिलाड़ी किसको बोलते हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: ग्रेट। अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो चोरी करते हैं।
3: तीस मार खान
0: की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: कैटरीना कैफ
0: की पहली फिल्म। सोचो।
3: बूम बूम बूम,
0: क्या बात है, ये कहीं से किसी ने प्रॉम्प्ट किया है क्या आपको? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। बूम के मेल लीड एक्टर का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: क्या बात है, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो अपने बेटे के साथ नजर आए थे।
3: बंटी और बबली
0: में लीड एक्ट्रेस कौन है?
3: ऐश्वर्या।
0: नहीं, बट आपने इतना जो गेम खेला है मेरे साथ उसके मद्देनजर मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो अनुष्का ने ये गेम जहाँ छोड़ा है उसके आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लाइक आई सेड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति, मेरे DMs में जाके अपना फोन नंबर मुझे भेजिए एंड आई विल गिव यू अ कॉल एंड आगे का गेम आपके साथ करूंगी कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना,
2: हिट गाना, हिट गाना।
0: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जिसके जरिए मैं आपके अंदर के मिर्ची फिल्मची को ढूंढती हूँ। सो आज इस गेम की शुरुआत की हमारे साथ अंकुश जी ने। अब इसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ है आयुष।
3: हेलो आयुष, कैसे हैं आप?
4: मैं बढ़िया, आप सुनाओ?
3: बिल्कुल बढ़िया, आप जरा और बढ़िया कर दीजिए ताकि मैं अपना गेम आगे कंटिन्यू कर पाऊँ यार।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो जिस पॉइंट पे अंकुश जी अटके थे, इट वाज शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं,
4: डियर जिंदगी।
3: डियर जिंदगी में शाहरुख खान के पास थेरेपी लेने कौन जाता है?
4: आलिया भट्ट।
3: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दोएंगे ना इसको,
4: गली बॉय। गली बॉय
3: गली बॉय के मेल लीड कौन है?
4: रणवीर सिंह।
3: रणवीर सिंह की फिल्म जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर है,
4: सिम्बा।
3: वाह, सिम्बा की गर्लफ्रेंड इन द मूवी,
4: सारा अली खान।
3: सारा अली खान की डेब्यू फिल्म,
4: ओ केदारनाथ।
3: केदारनाथ के मेल लीड का नाम
4: सुशांत सिंह राजपूत।
3: सुशांत सिंह राजपूत ने कौन सी बाइक?

0: Pepe Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vizba la burka. Milchi, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। एल्बम सर जी, हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो कपड़े
2: गाय?
3: नहीं दीदी, मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पॉटलॉक।
6: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: परफेक्शन इज ओवररेटेड बाबू मोशाय।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक इंसान की गलतियाँ, उसके जो फ्लॉज होते हैं, वो भी उसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं यार, उसकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में मदद करते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से परफेक्शन इज जस्ट एन इल्यूजन। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। और ये फ्लॉज एंड परफेक्शन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पांच का पंच की लिस्ट में आज हिंदी सिनेमा के कुछ फ्लॉड येट लव्ड कैरेक्टर्स की चर्चा हो रही है। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट ये जवानी है दीवानी से बनी AKA कबीर थापर के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर दो पे लेट्स talk about Piku movie से Piku के बारे में यार। So the movie released in the year 2015 जिसको Shujit Sarkar ने direct किया था and Deepika Padukone played the character of Piku। और एक ऐसी character है वो who puts people off। आप ऐसे किसी इंसान से जरूर मिले होंगे अपने जिंदगी में एंड उनको एक डिफिकल्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते होंगे। बाकी पीकू की बात करें तो शी टेक्स केयर ऑफ हिज डैड, लीविंग हर ओन लाइफ बिहाइंड एंड आई रियली लव हर। बट क्या वो कभी रिलैक्स होकर अलर्ट और केयरफुल रहना बंद कर सकती है? विल शी एवर लेट हर गार्ड डाउन? खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से राहुल के कैरेक्टर के बारे में। द मूवी रिलीज इन द ईयर 1998, डायरेक्टेड बाय करण जौहर और ये किरदार प्ले किया था शाहरुख खान ने। सो ही वाज अ फ्लर्ट, अ बुली, नॉट अ गुड फ्रेंड, स्टिल वी लव्ड हिम। बट सबसे बड़ी चीज की उसकी लेट वाइफ के लेटर और उसकी 8 साल की बेटी के पेरेंट ट्रैपिंग के बाद उसको रियलाइज होता है कि भाई वो अंजलि से प्यार करता है। मतलब किस डिल्यूजन में जी रहे हो भैया। एनीवे, मेरी इस लिस्ट में और भी ऐसे दो कैरेक्टर्स की बातें बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। श्रुति आपके साथ है।

ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Perfection is an illusion, Babu Moshai.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: स्पेशली अगर हम इंसानों की बात करें तो इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है. सबके अंदर गुड्स एंड बैड्स का कॉम्बिनेशन होता है. एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल इन माय लाइफ जिन्होंने मेरे बैड्स के बावजूद मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे प्यार किया. वैसे ये फ्लॉज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डिस्कस कर रही हूँ पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू जो फ्लॉड है बट स्टिल वी लव देम. सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट ये जवानी है दीवानी से बनी के कैरेक्टर के बारे में. देन वी टॉक्ड अबाउट पीकू से पीकू के कैरेक्टर के बारे में. और उसके बाद हमने चर्चा की कुछ कुछ होता है ऐसे राहुल के कैरेक्टर के बारे में. और अब बारी है नीरजा की बात करने की फ्रॉम द मूवी रेनकोट जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2004 डायरेक्टेड बाय ऋतुपर्ण घोष. बाकी ये कहानी है दो लवर्स की. किस्मत ने उनको अलग कर दिया बट वो अपनी अपनी शादी के बाद वापस मिले एक दिन जहां ये दोनों एक दूसरे से बस झूठ बोलते हैं अपनी जिंदगी के बारे में. बट लेटर ऑन दे ऑल्सो रियलाइज द ट्रूथ अबाउट देयर लाइव्स दे आर लिविंग. बाकी नीरजा का किरदार ऐश्वर्या राय ने प्ले किया था एंड आई लव हर. बट वो झूठ के मकान में रहती है यार, कितने दिन तक सस्टेन कर पाएगी. एनीवे मूविंग ऑन लिस्ट में नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सिलसिला से अमित के कैरेक्टर के बारे में जिसको प्ले किया था बिग बी बोले तो अमिताभ बच्चन ने. मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 1981 डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा. और अपने प्यार को कुर्बान करके अपने डिसीज्ड भाई की बीवी बोले तो अपनी भाभी से शादी की थी इस किरदार ने क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी. बट जब किस्मत उसको अपने एक्स से मिलाती है तो वो अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता. कसम से बता रही हूँ आज की डेट में हम ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाले रिलेशनशिप स्टेटस में जीते हैं ना कहीं अमिताभ बच्चन सर ने अपने इस किरदार के साथ उसको हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस किया था. बाकी मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कुछ ऐसे ही फ्लॉड कैरेक्टर्स ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट. MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के नाम से आप मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो. इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. इट्स हॉट.

0: का कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो. It is the origin story of Deadly Girls. मैं बात कर रही हूँ अल्फा की, बाबू मोशाय, जिसका ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग. भाई साहब, इस मूवी में, इसके ट्रेलर में अनिल कपूर हो, बॉबी देओल हो, या फिर हमारे दो खूबसूरत मोहतरमाएं जो कातिलाना एक्शन करते नजर आ रही हैं, आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ, भाई साहब सबको देख के जो एक्साइटमेंट बंध गई है अबाउट द मूवी, आई जस्ट कांट कीप काम फॉर द 3rd of July when it will release in the theaters. बाकी शिव रवायल डायरेक्टोरियल एंड वायर एफ स्पाई यूनिवर्स की इस पहली फीमेल लेड फिल्म को लेकर मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट इसका लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया जब इस ट्रेलर के लास्ट सीन में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ग्रीक गॉड, बोले तो ऋतिक रोशन की आंखों ने अपना कैमियो दिखाया. तो अगर आपको फिल्म का ओवरव्यू चाहिए, देन गो वॉच द ट्रेलर, यू विल डेफिनेटली लव इट. कॉकटेल 2 की एडवांस बुकिंग्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तब तक 25,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं ऑलरेडी इस मूवी की अक्रॉस नेशनल चेन्स, विच इन रिटर्न विल सरपास द बॉक्स ऑफिस नंबर्स ऑफ है जवानी तो इश्क होना है फॉर द डे 1. बाकी होमी अदाजानिया डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, एज यू ऑलरेडी नो, शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं. सो 19th of June इज द डेट जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन. मेरी टिकट्स तो ऑलरेडी बुक्ड हैं. कुणाल खेमू अब डेली रियलिटी शो होस्ट के तौर पे डेब्यू कर रहे हैं. हाँ जी, पहले ये एक्टर थे, फिर डायरेक्टर बने, गाना भी गा लेते हैं, लिख भी लेते हैं, और भाई अब रियलिटी शो होस्ट. सो बेसिकली इस शो का नाम है अलायंस, जिसमें 16 कंटेस्टेंट्स होंगे विद शिफ्टिंग लॉयल्टीज, स्ट्रेटेजिक गेम प्ले एंड 42 एपिसोड्स इन 6 weeks. हर एपिसोड रोज 12 बजे ड्रॉप किया जाएगा एंड द शो विल स्ट्रीम फ्रॉम द 26th of June ऑन प्राइम वीडियो. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

थ्रो बैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी सी एक रील मोमेंट में मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
2: तो
3: नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दोस्तों कुछ जज्बात वक्त नहीं लेते, सीधा दिल से निकल आते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और थ्रो बैक थर्सडे में यार एक पुराना गाना जो आज भी दिल के उतने ही करीब है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यार जब भी मैं सोचती हूँ इस गाने के लिरिक्स इतने ब्यूटिफुल है यार, ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर को कितना वक्त लगा होगा। तो अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो उसका जवाब है मेरे पास 5 मिनट। बस 5 मिनट में ये पूरा गाना जावेद अख्तर जी ने लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बस कहा था कि एक सिंपल पोएटिक और रिपीटेबल हुक चाहिए, और जावेद साहब ने वो लेजेंडरी लाइन लिख दी सिर्फ 5 मिनट में। और इतना सोलफुल, इतना सॉफ्ट कि गाना बन गया टाइमलेस। तो चलिए, अगर आज आपको कोई स्पेशल याद आ रहा है तो उसी के लिए आपके लिए थ्रोबैक थर्सडे में ये गाना प्ले करने वाली हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: Here we go again. Authentic, original, and veteran, all right.

कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहाँ ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विद एम्स एजुकेशन, बिकॉज विद जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। For more guidance, call 908-222-0002, 908-222-0002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu for a long-lasting career of medical billing and coding specialist, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शांता लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी कुछ कॉन्सर्ट्स ना सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो यादों का रीयूनियन होता है। एक गाना चलता है और आपको आपका पहला प्यार याद दिला देता है, दूसरा गाना आता है और पुराने दोस्त, लॉन्ग ड्राइव्स और वो रात भर चलने वाली बातें भी याद आ जाती है। और जब बात हो विशाल मिश्रा के कंपोज गानों की, तो यार उनके गाने ना सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए एक्साइटमेंट डबल है क्योंकि इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, और ये होने वाला है ग्रैंड, मैजिकल और ट्रूली अनफॉरगेटेबल, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं विथ पागलपन टूर इन अटलांटिक सिटी। और अगर आपने भी कैसे हुआ पहले भी मैं तुम हो तो या उनके किसी भी गाने को सिर्फ सुना ही नहीं लेकिन महसूस भी किया है, तो ये शाम आपके लिए है दोस्तों। हजारों फैंस एक साथ गाते हुए लिरिक्स, फोन फ्लैश लाइट्स का समंदर और वो गूज बम्स वाला मोमेंट जब पूरा एरिना एक ही सुर में गा रहा होगा, जून 26 की शाम को हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर साई यूएसए आईएनसी फॉर विशाल मिश्रा पागलपन टूर। और सारे जो रेडियो मिर्ची के विशाल मिश्रा फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही खास कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है कि विशाल मिश्रा का गाना कैसे हुआ, कौन से मूवी का है, यू हैव टू टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो बस DM कर दीजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI आपका जवाब, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते 9033-647-244 9033-647-244, और लकी विनर्स को मिलेंगे इस अमेजिंग टूर के फ्री टिकट्स। तो दोस्तों विशाल मिश्रा पागलपन टूर, डेट नोट डाउन कर लीजिए, June 26th, वेन्यू हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेन्यू इन द एंटायर न्यू जर्सी। टिकट्स बुक कर लीजिए ticketmaster.com या फिर SIUSAINC। और देखिए दोस्तों, इट्स विशाल मिश्रा पागलपन टूर ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी। तो एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होने वाली है जिसकी यादें काफ़ी हफ्तों तक आपके दिमाग में रहेंगी, आपके दिल में रहेंगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमों बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग।

0: सा रंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर पेरेंट का ना एक सपना होता है कि बच्चे ना दुनिया में कितना भी आगे बढ़े लेकिन अपने रूट्स को कभी ना भूले। और हर डांस लवर जानते हैं कि यार डांस ना सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, डांस एक कहानी होती है, एक कल्चर होता है और एक पहचान होती है। और इसी पहचान को 30 साल से संभाल कर रखा है इंडियानिका अकेडमी ने। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन पद्मा खन्ना जी के विजन से शुरू हुई ये अकेडमी आज भी कथक की नज़ाकत, बॉलीवुड की एनर्जी, गरबा के रंग, भांगड़ा की मस्ती और मॉडर्न डांस की क्रिएटिविटी को एक ही स्टेज पर लेकर आती है। और अब वक्त आ गया है उनके सबसे बड़े सेलिब्रेशन का, चमकते सितारे 2026 यानी इंडियानिका एकेडमी का 30th एनुअल कल्चर एंड टैलेंट ग्रैंड शो। और ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस भरी शाम नहीं होगी, ये उन बच्चों की मेहनत का सेलिब्रेशन है जो महीनों से रिहर्सल कर रहे हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है जो अपने बच्चों को कल्चर से जुड़े हुए देखना चाहते हैं। और ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि अपनी पहचान को सेलिब्रेट करना कितनी खूबसूरत बात होती है। तो दोस्तों कैलेंडर में नोट डाउन कर लीजिए, June 20th यानी शनिवार की शाम 4 PM ऑनवर्ड्स इन कॉलोनिया हाई स्कूल न्यू जर्सी। और टिकट बुक करने के लिए विजिट कीजिए indianikaacademy.com। और मिर्ची लिसनर्स के लिए स्पेशल कूपन कोड मिर्ची 2026 जिससे आपको मिलेंगे 30% ऑफ ऑन योर टिकट्स। जो जितने भी न्यू जर्सी के डांस प्रेमी हैं, कथक प्रेमी हैं, बॉलीवुड डांस प्रेमी हैं, भांगड़ा प्रेमी हैं, इस शो को, इस एनुअल गैदरिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही विजिट कीजिए indianikaacademy.com एंड बुक योर टिकट्स विथ मिर्ची कूपन कोड मिर्ची 2026। और डांस प्रेमियों के लिए ये अगला मस्ती भरा डांस वाला गाना right here on Mirchi, it's hot.

0: Mirci. Iskabala puskabala sakabala. Yabala. Burga burga. Burga. Navirbala burga. Mirci burga.
1: Mirci.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो में चिपके
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
4: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी क्राइसिस की बात होती है ना, तो यार हर क्राइसिस सिर्फ चैलेंजेस लेकर नहीं आती, कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग हेडलाइंस देखते हैं और कुछ लोग पॉसिबिलिटीज। और जब चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन और मार्केट अनसर्टेनिटी की बातें होती है ना, तो बहुत से लोग अक्सर एक सवाल पे अटक जाते हैं कि यार इसमें घर खरीदने का बेस्ट टाइम क्या होता है, क्या परफेक्ट मार्केट का वेट करना चाहिए या अपॉर्चुनिटी को पहचानना चाहिए जब वो सामने हो। और इसी पर थोड़ी क्लैरिटी और एक्सपर्ट इंसाइट देने के लिए मेरे साथ हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो अनसर्टेनिटी के बीच अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाने और होम बाइंग के लिए क्या ये राइट टाइम है, कैसे इवैल्यूएट करें, पूछते हैं बीश से। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

दोस्तों, एक अजीब सा मैजिक चल रहा है आजकल। जो गाने हम कैसेट या सीडी पे सुनते थे, वही आज रील्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपने भी नोटिस किया है कि यार, आजकल ना ये जो सारे गाने हैं वो रीडिस्कवर हो रहे हैं, जो हमने कभी लाइव फील किए थे। जैसे कि लग जा गले, आज जाने की जिद ना करो, या फिर ये शाम मस्तानी है। ये सिर्फ पुराने गाने ही नहीं रहे, ये फिर से नए फेवरेट्स बन रहे हैं। और सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है, इनके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे कि लो फाई वर्जन्स, अनप्लग्ड कवर्स, इंडी रिक्रिएशंस। हर जगह वही पुराने सुर एक नई आवाज़ में वापस आ रहे हैं। मतलब यार, एक ही गाना एक जनरेशन के लिए याद बन रही है और दूसरी जनरेशन के लिए डिस्कवरी। तो सच बताओ दोस्तों, इससे ज़्यादा खूबसूरत ब्रिज क्या हो सकता है, जहाँ माँ का फेवरेट गाना बेटी के प्लेलिस्ट में मैच हो जाए। और म्यूज़िक का तो यही चार्म होता है ना, कि टाइम भले ही चेंज हो पर मेलेडी अपनी जगह बना ही लेती है। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट गाना था जो फिलहाल रीडिस्कवर होता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और मैं बजाती हूँ अपना फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्स्चर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ, कौन से मूवी का है। डीएम मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो @9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर। एक शाम जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Murga. La vid bala murga. Mirchi, murga. Murga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बना दिया यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस लगाया नहीं
2: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं।
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। सच अ ब्यूटीफुल वेदर दोस्तों, और ये जो वीक है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीकेंड आ रहा है फादर्स डे। और वैसे तो यार फादर्स डे स्पेशल तो होता ही है, लेकिन इस जनरेशन के जो फादर्स है वो और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रीवियस जनरेशन की है, जो यू नो एक बोलते हैं जो एक साइकिल में चलती रहती है, एक बोलते हैं ना कि फादर्स इमोशनली प्रेजेंट नहीं होते थे, वो सारी बातें इस जनरेशन के फादर्स ने काफ़ी हद तक चेंज कर दी है। तो कूडोज टू ऑल दोज फादर्स हु आर स्पेशली यहाँ पर न्यू जर्सी में, जो इतने सारे यू नो कहते हैं जे कि हैंड्स ऑन फादर है यहाँ पर। तो जी हाँ, सच्ची बात है, एंड इट इज़ सीन, इट इज़ अप्रिशिएटेड। तो जितना भी कहा जाए फादर्स के लिए उतना कम है, और ऐसे में अगर फादर्स डे सेलिब्रेट करना है सबको, तो ऐसे में हमारे जो बॉबी जी है फ्रॉम राज जूल्स, वो हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं। तो आज भी उनसे पूछते हैं कि फादर्स डे के लिए क्या स्पेशल है। तो नमस्ते बॉबी जी, एंड वेलकम टू टुडे शाम शानदार।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। दोस्तों आप सबको ब्यूटीफुल इवनिंग। देखिए स्पेशल तो एक चीज है कि हमारे राज जूल्स में थ्री जनरेशंस, मेरे फादर जो आज भी अपनी ब्लेसिंग्स हमको देते हैं रोज, जितने दोस्त हमारे ज्वेलरी खरीदते आते हैं, स्टाफ को लेके, अपने पोते तक को लेके, तो मुझे लगता है जिस जनरेशन में ये हम इतनी दूर रहते हैं हिंदुस्तान से, अगर ऐसा मौका मिलता है पूरे परिवार को साथ रहने का और आपको उनकी ब्लेसिंग लेने का, तो उससे स्पेशल तो कुछ नहीं होता। एंड आई एम ब्लेस्ड एंड राज जूल्स इज ब्लेस्ड टू हैव दैट। सो हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ राज जूल्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस फादर्स डे में सबसे अच्छी बात यह है, जब पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में चेंज हो रही है, पीस डील्स की बात हो रही है, तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं पिछले हफ्ते से तकरीबन $100 per troy ounce कम ट्रेड कर रहे हैं पिछले हफ्ते से। सो फादर्स डे के लिए 22 कैरेट गोल्ड की चेन लेनी हो और 22 कैरेट गोल्ड के ब्रेसलेट्स लेने हो, प्लैटिनम के कफ्स लेने हो, ऐसा नहीं है कि पापा के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पापा क्या पहनेंगे या पापा नहीं पहनते, अगर आप उनको स्टाइलिश चीज देंगे तो वो पहनेंगे भी जरूर, चाहे वो प्लैटिनम की चेन हो, प्लैटिनम के मेंस ब्रेसलेट हो, प्लैटिनम के मेंस कफ हो, प्लैटिनम के बैंड हो, फ्यूजन मेटल के बैंड हो। मुझे लगता है राज जूल्स के पास हर एज ग्रुप, हर फादर के लिए कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा अवेलेबल है, जो आप rajjewels.com पे इजी सिलेक्शन से शिप करा सकते हैं एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। और मजे की बात यह है कि आप 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए वो ज्वेलरी स्पेशल घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में पैसे दे सकते हैं। कैसे, आइए राज जूल्स के टीम मेंबर आपको एजुकेट करने के लिए तैयार है कि किस तरह से अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस हिंदुस्तान से सस्ते हैं, और उसके ऊपर आपकी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन में जब आप वो खूबसूरत ज्वेलरी पापा के लिए घर ले जाते हैं तो आपको कोई डाउन पेमेंट, कोई इंटरेस्ट, कोई हिडन फी नहीं देनी। गोल्ड प्राइस आज का लॉक होगा और 9 महीने में पैसे आएंगे। कैसे, आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं विद rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो फादर्स हैं उनके लिए तो एक गिफ्ट खरीदना मम्मियों के लिए गिफ्ट खरीदने से भी ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन गोल्ड इज़ दैट थिंग जहाँ पर हम उन्हें थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं कि हाँ ये गिफ्ट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो दिस इज़ द ओनली गिफ्ट जिसके लिए वो खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। तो आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com और अपने फादर्स डे की गिफ्ट आज ही बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

तो बॉलीवुड का लैंडस्केप ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना एक फॉर्मूला होता था, बिग स्टार, बिग सॉन्ग्स, बिग रिलीज। आज ना इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है, क्योंकि एक्टर्स भी डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं और डायरेक्टर्स भी यूनिक स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, तो सिर्फ ग्लैमर नहीं, कॉन्टेंट भी डिमांड करती है। और शायद इसी वजह से कुछ फिल्म थिएटर में धमाका करती है और कुछ OTT पे कल्ट फॉलोइंग बना लेती है। यार ये इंटरेस्टिंग फेज है जहां बॉलीवुड एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मल्टीपल लेन्स में ग्रो हो रहा है। और सच कहूं तो जब इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करती है ना, तभी आइकॉनिक सिनेमा पैदा होता है। तो आप भी बताना आप कौन सी टाइप की फिल्म ज्यादा पसंद करते हो। टेल मी ऑन Insta@RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड भी ना न्यू जर्सी टर्न पाइक हो चुका है, क्योंकि सबको एक ही वक्त पे निकलना होता है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 बॉलीवुड का सबसे क्राउडेड मंथ्स में से एक माना गया है, जहाँ मल्टीपल मेजर रिलीजेस एक ही महीने में स्क्रीन्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी रिलीजेस एक साथ आने वाली है कि स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियंस अटेंशन दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ते ही जाने वाली है। और अगर लिस्ट भी देखे ना तो मजा आ जाता है, मतलब मूवीज लाइक मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2 और कहीं और बड़े बड़े टाइटल्स लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यार इसमें ना ऑडियंस का ही फायदा है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब एक जमाना था हम कहते थे कि यार कोई अच्छी मूवी ही नहीं बन रही है, तो अब प्रॉब्लम उल्टी हो चुकी है, क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं आ चुकी है कि हम ये कहने वाले हैं कि पहली कौन सी मूवी देखे। तो आप भी जरूर बताना कि यार जून में आप अगर एक ही मूवी देख पाओ बॉलीवुड की थिएटर में जाकर, तो वो कौन सी मूवी होगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, ये करते हैं यार थोड़े बहुत वॉचलिस्ट कंपेयर। और तब तक के लिए आपके लिए ये मजेदार सन्नई रिलीज वाली मूवी का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इंडिया जाने से पहले ना हम सबके बहुत ही छोटे छोटे अरमान होते हैं, जैसे कि माँ के हाथ का खाना, पुराने दोस्त से मिलना, फैमिली टाइम और 2 हफ्ते की कंप्लीट रिलैक्सेशन। लेकिन फिर फ्लाइट लैंड होती है और रिलैक्सेशन सबसे पहले इमिग्रेशन क्रॉस करके भाग जाता है, क्योंकि यार अगले कुछ दिनों में ना हमें इतने सारे लोग मिलते हैं जितने हमने पूरे अमेरिका में पूरे साल भर देखे भी नहीं है। और हाँ, हर घर में एक सवाल गारंटीड है। नाम अलग हो सकता है, अंकल भी अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल वही होते हैं कि बेटा अमेरिकन डॉलर में कितना कमा लेते हो। तो दोस्तों, आज का मिर्ची योगा लेसन वही है। इसमें कोई आसन आपको नहीं सीखने मिलेगा, इसमें इस सवाल को कैसे टैकल करना है यही आपको सीखने मिलेगा, द सैलरी क्वेश्चन आसना। क्योंकि जैसे ही ये सवाल आए ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, सीधा आंसर भी नहीं देना है, पहले हल्का सा स्माइल करना है, फिर पानी का एक हाथ सिप ले सकते हो, फिर आसमान की तरफ देखकर एकदम थॉटफुल चेहरा बनाना है और फिर जवाब देना है कि बस अंकल जी, आपके आशीर्वाद से पेट भरे उतना ही। एक्सीलेंट। मतलब देखिए, आपने ना पहले लेवल क्लियर कर लिया है और अब दूसरा लेवल तो ज़रूर आएगा। अच्छा चलो ठीक है बेटा, तो ग्रीन कार्ड मिला और फिर और एक लेवल तो ज़रूरी आता है कि बच्चे कब। तो हर सवाल का ना एक ही टेक्निक होता है कि आंखें बंद करनी है, सांस अंदर लेना है, सांस बाहर लेना है और दिल से बस इतना ही बोलना है कि अंकल जी या आंटी जी, बस आपके आशीर्वाद से जल्दी। तो यही है इंडिया विजिट का योगा, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की नहीं होती है, जवाबों की टेस्ट होती है। और अब आप भी मुझे बताइए दोस्तों कि इंडिया ट्रिप में आपको सबसे ज्यादा किस सवाल ने योगा कराया है, सैलरी, शादी, ग्रीन कार्ड या कुछ और। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिर्ची योगा के ऐसे ही चटपटे लेसन आपके लिए आते रहेंगे, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है,
3: आप सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। बस इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस, और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नजरों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को, और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है, ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं हैप्पी करते। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, राइट here on Mirchi, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना। हिट।

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हेल्दी लिविंग किसे नहीं चाहिए यार। तो बस हम तो यही सोचते रहते हैं कि अब कल से ही ना रूटीन पूरा चेंज होने वाला है, डाइट फॉलो किया जाने वाला है और इतना ही नहीं वर्कआउट किया जाने वाला है। लेकिन जैसे ही हम शुरुआत करते इतने सारे वीडियोज़ मिल जाते, इतने सारे सजेशंस और एडवाइसेस मिल जाते कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। फिर लगता है कि यार लेट्स गो बैक टू द रूट्स, ट्रेडिशनल योगा से शुरू करते। लेकिन उस समय भी इतने सारे सजेशन, इतने सारे वीडियोस की तभी भी समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करनी है। तो अगर आप भी इसी चक्कर में फंसे हो तो बस इस इंटरनेशनल योगा डे विच इज ऑन June 21st शनिवार आपके लिए आ रहा है इंटरनेशनल योगा डे का एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय SKN फाउंडेशन। इवेंट शुरू होगा 8:30 सुबह से लेकर, एंड इट इज फॉर बोथ एडल्ट्स एंड फॉर किड्स। ये इवेंट होने वाला है 6 Lane Court बिल्डिंग नंबर 9 Unit 22 हिल्सबोरो न्यू जर्सी। और अगर आपको रजिस्टर करना है तो बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट हैव टू कॉल एट 9086711344 या फिर आप ईमेल कर सकते हो info@skn.org। और दोस्तों इस इवेंट के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बहुत ही जल्द हम बुलाने वाले हैं हमारे शो में प्रियंका सप्रू को, जो कि यार 6 साल से एक योगा इंस्ट्रक्टर रही है। तो किस तरह से इस इवेंट में योगा की शुरुआत होगी, इंटरनेशनल योगा डे को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, सारी बातें होंगी। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा राइट हियर विद मी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: मस्ती स्वैग और जबरदस्त बीट्स हो तो बस एक ही शब्द निकलता है, वल्ला।

इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधु ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए बल्ला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा बाय बाय सायोनारा टू यू। लेकिन आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Ashi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ. आई एम मच वर्स. जब मैं डेटिंग ऐप पर ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग करती हूँ तो इससे दो चीज़ें होती हैं. आइदर दोज गाइज हु लव अ चैलेंज गेट अट्रैक्टेड टू मी कि अच्छा देखते हैं ये बाकी लड़कियों से भी ज़्यादा कठिन है, लेट्स क्रैक दिस कोड. नहीं मुन्ना, हम फनी हो रहे थे. और दूसरी चीज़ ये होती है दैट देर आर दीज फनी गाइज हु नो अ जोक व्हेन दे सी वन एंड देन दे गेट इन टच विद मी एंड दे लाइक यार तू तो बहुत सही बंदी है. आई एम लाइक तू भी बहुत सही बंदा है दैट यू फिगर्ड आउट माय जोक. लेकिन जब भी इसके बाद मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आई जस्ट टर्न अराउंड एंड सेड मैंने तो पहले ही कहा था मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ. आई एम मच वर्स, यू शुड हैव नोन बेटर. देख रहे हो, चित बी मेरी एंड पट इज ऑल्सो माइंड. तो अगर आप भी डेटिंग ऐप पर जाना तो चाहते हो बट यू डोंट नो हाउ टू रॉक योर वर्ल्ड ऑन अ डेटिंग ऐप, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड आई विल टीच यू हाउ टू वाइब इट राइट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड आई एम नॉट लाइक योर एवरेज गर्ल, आई एम मच वर्स. ऑन दैट नोट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.